0: सुधलून बना तो
1: सिगे ताना मिस क्रिशा
0: मग अम्पिंग लंता नती मामा टिकदन से इमो मामा तर सिला ब्रेना
1: निकुल बान को पेरो किनाले ना तो किनी बोहातुन मेंटस नी अना तो किनी यावी अनन कर्तुआ
0: सिगे ताना रहिन ब्रेना मेंटस वो पसब दिन ही सतासन इमो मामा तर सिला
1: ताना मिस क्रिशा
0: Sigurado magit ka ka nga dilito mo sa katinhin sa karaampay si mama ni mo.
1: Masakay to aras siya sa amo, Miss Gracia. O wasab siya may paw, ngani ako din sa taas ini karaang bahay.